अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।

अर्जनम् भवीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनम् यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् सीताराम नम महाराज की। मंत्र पढ़े परमार्थी वेस्तरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग्याय मधुर श्री सीताराम नम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय, श्री राम जय, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर।

गोविंद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म सन्यास योग। चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस दिव्य ज्ञान को अति पुरातन तथा सनातन बतलाते हैं। वह हर युग में आवश्यकतानुसार स्वयं के प्रकट होते रहने की

श्री भगवान कर्म अकर्म तथा विकर्म की गहनता स्पष्ट करते हैं। वे यज्ञ की महिमा का विवेचन करते हुए निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं।

0: गए।
1: श्री गोविंद ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पांडव, अपने हृदय में स्थित अज्ञानी संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर रण के लिए तैयार हो।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: उनमें श्री वैद्यनाथेश्वर और श्री कीर्ति नारायण प्रमुख है। वे 12वीं शताब्दी के है। कावेरी नदी तट पर सोमनाथपुर में भी एक प्रसिद्ध केशव जी के मंदिर है।
1: आप कहाँ ले चलेंगे? चलिए शिवाना समुद्रम। ये देखिए, इस नदी पर ये पहला निर्झर है यानी जलप्रपात। इससे आगे कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो होगेनकल के पास भी एक प्रपात बनाती है। यहाँ कावेरी इस प्रपात के पास एक द्वीप बना लेती है। प्रपात के दो भाग हैं, गगन चुक्की भर चुक्की। अब आप जिस प्रपात को देख रहे हैं वो गगन चुक्की है।
2: वाह, कितना भव्य! ऊपर से गिरता पानी नीचे पहुंचने तक फुव्वारे उछलता है। न जाने कब से इन प्रस्तर खंडों को वो काटता नीचे गिर रहा है।
1: यहाँ के कार्यकारी अभियंता से मिले तो इस प्रपात की शक्ति का वास्तविक परिचय होगा। ये हैं श्री रेवण्णा जी।
2: नमस्कार।
3: द फॉर्मर महाराज ऑफ मैसूर विथ द असिस्टेंस ऑफ दिस आई मीन ब्रिटिशर्स।
2: मैसूर रियासत के भूतपूर्व महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता से 25 साइकिल वाली बिजली कोलार सोना खानों को पहुंचाने के लिए इस जल बिजली परियोजना की कल्पना की। पहला विद्युत उत्पादक केंद्र 1902 में लगाया गया। इस उत्पादन केंद्र का नाम भूतपूर्व मैसूर राज्य के दीवान शीशाद्री अय्यर के नाम पर रखा गया।
4: यहाँ कितने जनरेटर हैं और इनकी उत्पादन शक्ति क्या है?
2: टोटल यहाँ 10 संयंत्र हैं और इसकी कुल उत्पादन शक्ति 42 मेगावाट है। ये एशिया भर में अपने ढंग का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। यहाँ से बिजली पहुँचाने के लिए कोलार सोने की खानों तक जो लाइन लगाई गई वो समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा लंबी थी।
1: इस केंद्र का महत्व इसलिए भी है कि बेंगलोर शहर को पेयजल का अधिक भाग यहाँ से जाता है। यह व्यवस्था न होती तो शायद बेंगलुरु वासी करीब 50 लाख की जनता में 60% को जल ही नहीं मिलता।
3: वाटर इज आल्सो बीइंग फेड टू बेंगलुरु थ्रू पाइपलाइंस फॉर बेंगलुरु।
2: यहां से बेंगलुरु को पानी भेजा जाता है। पहला चरण तो समाप्त हो गया, दूसरा तीसरा भी हो गया, चौथा बन रहा है।
3: तो फर्स्ट स्टेज आल्सो।
1: अब आप मंडा जिले में नहरों के किनारे चलेंगे। यहाँ की हरियाली देखनी हुई।
2: सर्वत्र धान के खेत, कहीं कहीं गुड़ की सोनी सोनी गंध, मेहनतकश मजदूर और किसानों के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहटें। कावेरी माता सचमुच माता है। फिर मुझे अष्टोत्तर मंत्र की एक पंक्ति याद आती है। तरंगावली समृद्धि मृदु बालुका शोभायता नाम।
1: कावेरी के तरंगों ने खेतों में भी शस्यों के तरंग भर दिए हैं। यहाँ की मृदु बालुका में भी जीवन भर दिया है।
4: वाह!
1: इसका उदाहरण है मंड्या के पास का एक गांव होड़लु। ये हैं श्री चौड़प्पा जी, भूतपूर्व शासक और मंड्या जिले के एक प्रगतिशील किसान।
5: विश्वेश्वर कैनाल प्रारंभवाद मेले सीढ़ी बंद मेले ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಭತ್ತ ರಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ।
2: 1931 ಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಹರ್ ಕೆ ಆನೆ ಸೆ ಯಹಾ ಏಕ್ ಧಾನ್ ವಗೈರಾ ಕಿ ಖೇತಿ ಹೋನೆ ಲಗಿ। ಅಬ್ ಯಹಾ 3 ಚೀನಿ ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೈ। ಆಜ್ ಭಿ ಯಹಾ ಕೇವಲ 1/3 ಜಮೀನ್ ಹಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಕಾ ಲಾಭ ಉಠಾ ಸಕಿ ಹೈ। ಆಜ್ ನಾಗಮಂಗಲ್ ಮೇ ಜೋ ಸ್ಥಿತಿ ಹೈ ಪಹಲೆ ವಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಯಹಾ ಥಿ। ಜಮೀನ್ ಅವಸರ ಥಿ। ಅಬ್ ಸಾಲ್ ಮೇ 3 ಫಸಲ್ ಲೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ಇಸಿ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಗೌಡಾ ಜಿ ಭಿ ಯಹೀ ಕಹತೆ ಹೈ।
6: ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ। ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ
7: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ ಹಮೇಶಾ ಅಕಾಲ ಪಡ್ತಾ ಥಾ, ಬಾರಿಶ್ ನಹೀ ಕೆ ಬರಾಬರ್ ಥಿ। ಲೋಗ್ ಯಹಾಂ ಸೆ ದೂಸರೆ ಸ್ಥಾನೋಂ ಪರ್ ಬಸ್ನೆ ಜಾತೆ ಥೆ। ಹಮಾರಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಥಾ ಕಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಿ ನೆ ಕಾವೇರಿ ಪರ್ ಬಾಂಧ ಬನಾಕರ್ ಇಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ 5-6 ತಾಲೂಕೋಂ ಕೋ ಸಹೂಲಿಯತೆ ದಿ।
4: सुना है नहर आने से पहले श्रीरंगपट्टनम वाले मंडिया में लड़की नहीं ब्याहते थे। क्योंकि पीने के पानी के लिए बहुओं के सिर पर कलसा रखे मीलो जाना पड़ता था।
1: आपने बड़े ध्यान से सुना।
4: हाँ,
1: चलिए हम आगे बढ़ें। कावेरी ने कर्नाटक को सरसर

0: तो बनाया, पर जैसे अष्टोत्तर मंत्र को आपने दोहराया, इसने चोल देश का जलोद्धार किया। ग्रीष्म काल में भी वहां के बहुत सारे प्रदेश, विशेषकर तंजावुर और तिरुची के क्षेत्रों की शोभा बढ़ाई। इसीलिए तमिल काव्य शिल्पाधिकारम के कर्ता इलिंगो अडिगल ने इसकी महिमा गाई है।
1: तिंगल मालई वेणकुडयान सेन्नी सेंगोल अदु ओच्ची गंगई तन्नै पुनर्ंदालुम पुलवाई वाळी कावेरी।
2: चांदनी का धवल छत्र ताना है गंगा ने, कविता बनकर बह निकली है कावेरी जलधारा ने।
1: गंगई तन्नै पुनर्ंदालुम पुलवादोळिदल कयक्कल नाय मंगई मादर पेरुंगर पेंद्र अरिंदेन वाली कावेरी।
2: गंगा की प्रशंसा पाकर भी तू नहीं छोड़ती अपना पथ, अस्खलित ब्रह्मचारिणी सदा रही समृद्धि दायिनी।
0: तिरुची के सेंट जोसेफ कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक प्रणतार्थी हरन तमिलों की दृष्टि से कावेरी को देखते हैं।
3: तमिल में का शब्द का अर्थ है पूंजोले अर्थात वाटिका, विरी शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। यह नदी बहते समय सुनहरी अणुओं को लेकर आगे बढ़ने के कारण कावेरी नदी को पुन्नी भी कहते हैं। तमिल काव्यों में कावेरी के बारे में कई उद्धरण प्राप्त है, यथा पट्टिनपाले में वान पोईपिनुम तान पोया मलई तलय कडरकावेरी पुनल परंद पुनकुविक्यम, बरका हो ना हो मैं तो बहती रहूंगी, पर्वत शिखर से झरती रहूंगी, सरसाती रहूंगी, सोना बरसाती रहूंगी।
4: अब हम होगेन कल प्रपात, मेकेदाटू, सेलम, चिदम्बरम आदि स्थानों को पार कराए। कावेरी नदी के किनारे किनारे चलते चलते बरगरे, कुरुंगाडू दुरे, तुरप्पन तुर्ती, पांडी कोड़ी मुड़ी, वलंजुली, कुंभकोणम आदि शिव स्थलों को भी देख आए।
0: हाँ, अब यहाँ के बांध भी देख लेंगे, मेट्टोर, जाडरपाल्यम, मोकुंबू और ग्रांड एनिकट भी देख लेंगे।
4: अच्छा,
0: हम मेट्टोर एनिकट देखकर अब मोकुंबू पहुंचे हैं। ये देखिए श्री मुत्तस्वामी, मेट्टोर जलाशय के कार्यकारी अभियंता यहाँ है, इनसे भेंट कर लें।
4: नमस्कार।
5: Mettur Dam, with its storage capacity of 93 TMC, the maximum height is 120 feet.
6: Mettur बांध की ऊंचाई 120 फुट है। इसका जल संग्रहण सामर्थ्य 93 TMC है। क्योंकि इसको बनाने वाले इंजीनियर का नाम स्टैनली था, इसको स्टैनली जलाशय भी कहते हैं।
0: हमने सुना है कि इसी सन दूसरी सदी में कावेरी पर कोई बांध बनाया गया।
5: This Kaveriyam is having this grand anicet built by Karigal Chola and there it
6: कावेरियम पर ग्रैंड अनेकट है, इसको करिकाल चोलन ने दूसरी शताब्दी में बनाया था। यहाँ कावेरी के तीन भाग हैं, कावेरी, वेन्नार और ग्रैंड अनेकट नहर। तीसरा मानव निर्मित है ग्रैंड अनेकट नहर, इसको 1933 में बनाया। इस जिले में 36 उपनदियां हैं।
7: वहाँ नदी के पार पर आप सीधे देखिए दक्षिण की ओर।
0: देख रहा हूँ और आपका इशारा भी समझ गया।
7: हाँ।
0: यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर जो मंदिर का गोपुर है,
7: हाँ,
0: वो यहाँ से भी दिखाई पड़ता है। चलिए वहीं चलें, वो श्रीरंगम के मंदिर का गोपुरम है। पहले यहाँ के प्रधान आचार्य श्री रामानुज परंपरा के गुरुवर जी पुंडरीकपुरम आश्रमम श्रीमत आंडवन स्वामीगण से मिल लें।
4: स्वामी जी, आप श्री रंगनाथ स्वामी जी के बारे में कुछ कहें।
8: अयोध्या रामाराधित श्री रंगनाथ कावेरी मध्य श्रीरंगाख्ये प्रणवाकार विमाने सदा शयानो वर्तते।
4: और कावेरी के बारे में?
8: अस्माकं पाप निवारण पूर्वकं पावनत्वेन उपनिषद प्रसिद्धासु नवसु नदीषु कावेरी अन्यतमा।
0: स्वामी जी का आशय है पाप निवारण करने वाले उपनिषद में प्रसिद्ध नौ नदियों में कावेरी का विशेष स्थान है।
8: अस्याः प्रभावं तुला कावेरी पुराणं विशेषतः वर्णयति। कावेरी तोयमाश्रित्य वातो यत्र प्रवर्तते तद्देशवासिनां मुक्तिः किमु तत्तीरवासिनां।
0: वाह, कावेरी पर बहने वाली वायु जिन जिन देशों पर चलती है वहां के लोगों को मुक्ति मिल जाती है, फिर उसके तट पर निवास करने वाले लोगों का क्या कहना।
4: नमस्ते स्वामी जी, अब हम श्री रंगनाथ के दर्शन कर लें।

0: कैसी भव्य मूर्ति है। ऐसी सुंदर मूर्ति को जो ना देखे उसका जीवन ही व्यर्थ है।
1: आपने ठीक कहा, शायद इसीलिए इस मूर्ति को देखकर श्रीपाद राय के जिह्वा से तत्काल निकला था कंगळिर्द्यातको कावेरी रंगना नोडदा। वे आंखें ही क्यों जिन्होंने श्री रंगनाथ की मूर्ति को न देखा हो।

0: हाल ही में यहाँ इस मंदिर पर 236 फुट ऊंचा गोपुरम बनाया गया।
1: इसी गोपुर को हमने मोकुम्बो से देखा था।
0: हाँ,
1: लगता है हम तिरुच्ची पीछे छोड़ा है, तंजावर पहुंच गए। मैंने सुना है कि यहाँ पर मध्ययुगीन कोई लाइब्रेरी है।
0: हाँ, सरस्वती महल ग्रंथालय।
2: दिस इज वन ऑफ द फ्यू मेडिवल लाइब्रेरीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरीज।
3: यह मध्ययुगीन ग्रंथालयों में से एक है। इसमें 45,000 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं। इनमें से बहुत सारे संस्कृत में हैं। 30,000 तो संस्कृत में हैं, बाकी तमिल, मराठी और तेलुगु में हैं।
0: इसकी स्थापना विजयनगर के नायक राजाओं ने करवाई, फिर शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसको संरक्षण और विस्तार प्रदान किया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी कावेरी के किनारे वाले मंदिरों में प्रमुख है। यहाँ एक और प्रसिद्ध मंदिर है।
1: कौन सा?
0: बंगारू कामाक्षी का।
1: अच्छा,
0: इसकी प्रसिद्धि का एक दूसरा भी पहलू है।
1: वो क्या?
0: जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर की काली की उपासना करते थे,
1: हाँ,
0: वैसे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में एक श्री श्यामा शास्त्री जी भी कामाक्षी के पुजारी थे।
1: कर्नाटक संगीत के तीन मूर्ति संत त्यागराज, मुत्तु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री तीनों तंजावुर के थे।
0: दोनों थे ही, पर तीसरे भी यहाँ से दूर नहीं थे।
1: अच्छा,
0: कुछ ही किलोमीटर के फासले पर एक स्थान है तिरुवायूर।

वहाँ उनकी समाधि है। उनकी आराधना हर साल तिरुवैयारू में होती है। उस महान भाव ने अत्यंत विनय के साथ संसार के कितने ही महान भावों की वंदना की थी। आज भी उस पर्व पर महान संगीतज्ञ समूह में गाते हैं।

0: कावेरी के किनारे संगीत और शिल्प कला तो सदियों से समृद्ध बनती रही, पर संस्कृत शिक्षा की धारा भी यहाँ के गांवों में शिष्यों में जलसिंचन के साथ साथ बहती रही। यहाँ कुछ ब्राह्मणों के अग्रहार बने। ऐसा एक अग्रहार है महादानपुर, वहां मेरे एक मित्र हैं श्री राजाराम।
1: यह महादानपुरम में और आसपास के गांवों में ब्राह्मण लोग यजुर, साम, ऋग, वेद अभी भी गाते हैं। कावेरी हमारे लिए केवल जलधारा नहीं किंतु जीवन दात्री है। अगर इसका जल इस क्षेत्र को नहीं मिलता होता तो यहाँ की जमीन बंजर हो जाती। यहाँ जो हरियाली दिखती है वह नहीं होती। यहाँ के जीवन में संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं होता।
2: यहाँ अब भी संस्कृत के विद्वान रहते होंगे।
0: यह है श्री राधा कृष्ण, यहाँ के ITI के संचालक, इतिहास के प्राध्यापक थे, पर उसे छोड़कर पारंपरिक जीवन में ढले हैं।
3: पुण्यतीर वासात सद्गुणाः पापक्षयं पुण्यलाभः प्रवर्तते। जाह्नवी तीरे तीरात्र वासात यामुने भांजरात्र वासात पापक्षयं पुण्यलाभः किंतु सद्य पुनाद कावेरी पापमा मरणांतिकम्।
0: जिस प्रकार कर्नाटक में कावेरी मंड्या जिले में हरित क्रांति लाई, उसी प्रकार तमिलनाडु में तंजावुर तिरुचिरापल्ली जिलों में कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। विष्णुपेट के प्रगतिशील किसान श्री एस वेणुगोपालन कहते हैं,
4: एक ग्राम कल्याण कड़क त्रिवारोटल 10वें मील के
5: इस गांव तिरुवायूर के पूर्व में 10वें मील पर है। इसका नाम विष्णुपेट है। उस जमाने से यहां कृषि मुख्य पेशा रही है। विष्णुपेट एक जमाने में अग्रहार रहा। तब वेद पढ़ाने वाले पंडित कृषिक भी थे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आजकल हम 1 हेक्टेयर में 9 टन धान पैदा करते हैं और इसीलिए हमारा गाँव विष्णुपेट की जगह 9 टन गाँव कहलाता है।
0: कावेरी के किनारे लालगुड़ी एक गांव है, वहां के प्रगतिशील किसान कनक सभे से आपको मिला देंगे।
6: द कावेरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज रनिंग इन अवर तमिलनाडु।
7: कावेरी तमिलनाडु में एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है। तमिलनाडु में विशेषकर तिरुचि और तंजावुर जिलों में सिंचाई के कारण अच्छी कृषि होती है। यहाँ केवल तमिलनाडु के लिए ही नहीं, सारे भारत के उपयोग के लिए धान पैदा करते हैं।
2: अब आप यहाँ से कहाँ ले जाएंगे हमको?
0: कावेरी जहाँ सागर में मिल जाती है, वहाँ जाने से पहले तंजावुर के कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री डी बालसुब्रमण्यन से मिल लेंगे।
8: इन द ईयर 1934 द मेट्रो डैम वाज कंस्ट्रक्टेड एंड आल्सो जीए कैनाल वाज इंट्रोड्यूस्ड।
9: 1934 में मेट्रो बंद बनाया गया। ग्रैंड एनेकट नहर भी बनी। इससे पहले 4 से 4.5 लाख हेक्टेयर में कृषि होती थी। 1934 से पहले यहाँ वर्षा पर आधारित कृषि होती थी, अब यहाँ धान की खेती होती है। 1960 के बाद साल में 2 फसल लेने का क्रम चला, क्योंकि नहर के द्वारा जल की आपूर्ति का भरोसा हो गया।
2: तो हमारी यात्रा तल कावेरी से शुरू हुई और अब अंत होगा
0: पूम फुहार पर, जहां कावेरी सागर में समा जाएगी।
2: हमने कावेरी के उद्गम को देखा तल कावेरी में, जहां केवल पानी का एक छोटा सा स्रोत था। उसका विशाल पात्र देखा मुकुम में, श्रीरंग में। अब यहां कावेरी एक पतली धारा बने।
0: श्री नागराजन अपनी पुस्तक कावेरी में कावेरी के सागर संगम का यूं वर्णन करते हैं।
9: बहुत पहले कावेरी माँ से मिलने को आतुर एक किशोरी के समान दौड़ लगाती, इसके वक्ष से लग जाती। किंतु आज समुद्र पीछे हट गया है और कावेरी

0: एक पतली सी धारा बनकर बालू का राशि में से जगह बनाकर समुद्र की ओर बढ़ती है। इस दशा में उस गरिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते।
1: कावेरी के किनारे किनारे अखिल भारतीय रूपक माला में कावेरी पर आपने ये रूपक सुना। इसका आलेख तैयार कर प्रस्तुत किया H.V. रामचंद्र राव ने। प्रस्तुति सहायक थे A.R. गोपाल नायक। इसमें अनिल कुमार, अहमद जलीस, मिलन सर अहमद, शिवशंकर कणाजनवर, B.R. रत्नमाला और चंद्रिका ने भाग लिया। आकाशवाणी के तिरुचनापल्ली और मैसूर केंद्र की सहकारिता में निर्मित ये रूपक हमारे बेंगलुरु केंद्र की भेंट।

Arriba, Mar.

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांगी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध रखी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे, अपने साथियों के साथ देखा कि घंटी भी बंधी हुई है। समझ गए गोपी बड़ी चालाक है। तो घंटी को आदेश दिया कि तुम बोलना नहीं, चुप रहना, मेरे साथियों को माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई, सब साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, वो तो सबको खिला के खाते थे। जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाए तो हम सारे संसार को बताएं कि अब प्रसाद ले लो, भगवान ने भोग लगा लिया। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया, ले गई यशोदा के पास। यशोदा अचानक पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया

0: सबसे पहला तर्क दिया।
1: भोर भयो गयन के पाछे तूने मधुबन मोही पढ़ायो, चार पहर पंछी बट भटक्यो

इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया।

0: अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी।
1: अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी।

गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या, ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे

कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखे शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

एक बार आपकी जोरदार तालियां हमारे सब साथी कलाकारों के लिए। साइड रिदम पर मधुर एके, गिटार पर हिमांशु बिजुलधर, संतूर पर पीयूष पवार, तबले पर यामा सरशार, और जिन्होंने डांस प्रस्तुत किया संगीता रॉय। आज के अनाउंसर स्मिता परिक, और हारमोनियम पर

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

देवाधिदेव महादेव की लीला के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दैत्यों के धर्म नाश के पश्चात भगवान शिव शंकर त्रिपुरासुर वध के लिए उद्धत हुए। शंकर रूपी अपने काल को समक्ष देख त्रिपुरासुर तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने उनसे वर मांगा कि वे अपने हर जन्म में महाप्रभु के भक्त बने रहें। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने अपने एक ही वाण से त्रिपुर और उसके

0: सब वासियों को भस्म कर डाला और ऐसे अंत हुआ दैत्य माता दिति के वंश का। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, पिछली भेंट में आपने बताया था कि तारक वंश के विनाश से भी दैत्य अत्याचारों का अंत नहीं हुआ। इस क्रम में अगला महादैत्य जलंधर था।
2: द्विज श्रेष्ठ शौनक जी, जैसा मैंने कहा था, जलंधर की उत्पत्ति का निमित्त स्वयं देवाधिदेव थे।
1: तो सुनाइए ना ये वृत्तांत महाभाग।
2: शौनक जी, त्रिपुरासुर वध के पश्चात जगत कुछ समय के लिए शांत हो गया। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र महामहिम भगवान शिव शंकर के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जा रहे थे। महाप्रभु ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से रूप बदल कर उन्हें मार्ग में ही रोक लिया।
3: महापुरुषों, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से कैलाश पर विराजे हैं?
4: अरे जटाधारी, क्या तू हमें नहीं पहचानता? हम देवेंद्र हैं और ये हैं ब्रह्म ऋषि देव गुरु बृहस्पति। तू कौन है तथा हमारा मार्ग क्यों रोके बैठा है?
3: मैं तो एक साधारण शिवगण हूँ, कैलाश मार्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया हूँ।
4: तो जा अपने स्वामी को सूचना दे कि हम इंद्र उनसे साक्षात्कार के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, तू अभी तक बैठा है? जाता क्यों नहीं? मैं तुझे अभी अपने वज्र से प्राणहीन करता हूं।
5: अरे ये क्या, मेरा वज्र धराशाही होकर भूमि पर गिर पड़ा और ये शिवगण कुपित होकर ये क्या रूप धारण कर रहा है?
6: देवराज, ये तो स्वयं देवाधिदेव हैं। देखिए, इनका तीसरा नेत्र खुल रहा है।
7: क्षमा महाप्रभु, क्षमा। बृहस्पति का दंडवत स्वीकार करें प्रभु, अपनी इस क्रोधाग्नि को रोक लें प्रभु। देवराज से अनजाने में भूल हो गई प्रभु।
3: देव गुरु बृहस्पति, अहंकार के मारे देवताओं को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे अपने बल के गर्व पर किसी साधारण व्यक्ति को अपमानित करें।
5: भगवान, आप तो सदैव भक्तों पर दया करते हैं, अपने भक्त वत्सल स्वरूप को सार्थक कीजिए प्रभु।
3: मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है इंद्र, मैं अब अपनी इस क्रोधाग्नि का क्या करूं?
7: देव, आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए प्रभु।
3: गुरु बृहस्पति, हम आपकी बुद्धिमता से प्रसन्न हुए, आपने इस अहंकारी इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं आपको जीवन दाता के नाम से विख्यात करता हूँ और अपने नेत्रों की अग्नि को क्षीर सागर में डालता हूँ।
6: अरे महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए। देवादि देव की क्रोधाग्नि क्षीर सागर में पड़ते ही ये कैसा दिव्य बालक प्रकट हुआ है,
7: परंतु कैसा विकराल रुदन है इसका। इससे तो संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा है।
5: हे परम पिता ब्रह्मा, कुछ कीजिए, जगत को इस कर्ण भेदी रुदन से बचाइए, इस बालक का नाश कीजिए।
8: हे समुद्रराज, ये बालक किसका है, क्यों इतना रुदन कर रहा है?
9: हे परमपिता, ये तो ज्ञात नहीं कि ये बालक किसका है, परंतु ये अवश्य जानता हूं कि ये गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है।
8: लाइए, इसे हमारी गोद में दीजिए।
9: ये लीजिए विधात, आप ही इस बालक के जात कर्मादि संस्कार कीजिए।
8: अरे, अरे, ये

0: मालक।
1: इंद्रदेव
0: बालक,
1: बालक ने रोते रोते परम पिता की ग्रीवा को हाथों से जकड़ लिया है। देव गुरु, पीड़ा के कारण ब्रह्मदेव के नेत्रों में अश्रु उमड़ आए हैं।
2: शांत शांत समुद्र पुत्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे नेत्रों से जो जल निकला है, इसके कारण मैं इस बालक का नामकरण जलंधर करता हूं। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। ये सभी शास्त्रों का ज्ञाता महापराक्रमी महाधैर्यवान तथा महायोद्धा होगा। मुनिश्रेष्ठ शुक्राचार्य।
3: आज्ञा आदि गुरु ब्रह्मदेव।
2: शुक्राचार्य, तारक वंश के अंत के पश्चात आप शिष्यहीन हो गए हैं। हम आपको एक महातेजस्वी शिष्य प्रदान करते हैं। आप इन असुर राज जलंधर का राज्याभिषेक कीजिए, फिर कालनेमी असुर की अति सुंदर कन्या वृंदा से इसका विवाह संपन्न करवाइए।
3: परम पिता, आप धन्य हैं। समय समय पर अपने शिष्य शुक्राचार्य को भी आप शिष्य प्रदान करते रहते हैं। आपका प्रस्ताव अति उत्तम है। कालनेमी की पुत्री वृंदा सर्वथा जलंधर के योग्य है। वो पतिव्रता, सौभाग्यशाली तथा शीलवती है।
2: सागर पुत्र जलंधर।
4: आज्ञा देव।
2: हमारा वरदान है, शक्ति में तुम शिव पुत्र कार्तिकेय के समान होंगे। शिव के अतिरिक्त तुम्हारा वध और कोई नहीं कर सकेगा। मृत्यु के पश्चात तुम वहीं लौट जाओगे जहां से उत्पन्न हुए हो।
4: आपके आशीर्वाद से मैं कृतार्थ हुआ परमपिता ब्रह्मा।
5: दैत्य राज जलंधर की जय हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजसभा में आने की अनुमति चाहते हैं।
6: मूर्ख सेवक, दैत्य गुरु को किसी भी सभा में आने की अनुमति की आवश्यकता नहीं। उन्हें तुरंत आदर पूर्वक लेकर आओ।
5: जो आज्ञा दैत्यराज।
6: सभासदों, स्मरण रहे, द्वितीय प्रसंग के पश्चात शुक्राचार्य हम असुरों से खिन्न हैं, परंतु हम असुर उनके मार्गदर्शन की अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं है। उनके आदर सम्मान में कमी ना रहे।
5: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
7: जय।
5: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
7: जय।
5: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
7: जय।
3: यशस्वी भव दैत्य प्रजा।
4: दैत्य गुरु, यहां हमारे समीप आसन ग्रहण करें। अपने आगमन का उद्देश्य बताएं दैत्य गुरु।
3: वत्स जलंधर, समुद्र मंथन की घटना के सहस्रों वर्षों के पश्चात भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिली है।
4: दैत्य गुरु,
3: मेरे प्रिय शिष्य राहु का कटा हुआ शीश आज भी मुझे द्रवित कर देता है। मैं देवताओं से प्रतिशोध लेने को आतुर हो उठता हूं।
4: दैत्य गुरु, दैत्य भ्राता, राहु का शीश क्यों काटा गया?
3: समुद्र मंथन के पश्चात प्राप्त हुआ अमृत देवता पी गए, परंतु फिर भी अमृत शेष रह गया। राहु ने देवता रूप धारण कर उसे पी लिया।
4: क्या, पी लिया? फिर दैत्य गुरु, उन्हें अमृत तो प्राप्त क्यों नहीं हुआ?
3: इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने शे देख लिया। इससे पूर्व कि अमृत राहु के गले से उतरकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाता, विष्णु ने उसका शीश काट डाला।
4: दैत्य गुरु, आज्ञा करें दैत्य गुरु, देवताओं के इस कुकृत्य का दंड देने के लिए आपके इस शिष्य

0: क्या करना होगा।
1: दैत्य राज जलंधर, दुष्ट इंद्र को मेरे पूर्व शिष्यों ने अनेक बार इंद्रलोक से बाहर निकाला। इस बार कुछ ऐसा उपाय करो कि परास्त होने के पश्चात इंद्र लौट ना सके। संपूर्ण त्रिलोकी सदा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाए।
0: दैत्य गुरु, ऐसा तो मात्र युद्ध से ही संभव है।
1: तो इंद्र से युद्ध करो। तुम्हें ब्रह्मा का वरदान है, शिव के अतिरिक्त तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता। और वत्स जलंधर,
0: आज्ञा दैत्य गुरु।
1: ब्रह्मा ने वृंदा से तुम्हारा विवाह करवाकर बहुत बड़ी भूल कर डाली है।
0: भूल कर डाली? वो कैसी दैत्य गुरु?
1: तुम्हारी पत्नी का सतीत्व अति तेज में है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा रक्षक सिद्ध होगा।
0: दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाया।
1: वत्स, वैसे तो किसी भी पत्नी का पति व्रत धर्म उसके पति का बल होता है। वृंदा तो अखंड पति व्रता है। उसके इस धर्म का भेदन ही तुम्हारी पराजय का कारण बन सकता है। और शिव कभी इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि विजय के लिए किसी स्त्री का शील भंग किया जाए। अतः तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो।
0: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुंभ निशुंभ,
2: आज्ञा दैत्य राज।
0: अपनी समस्त सेना इंद्र के नंदनवन में उतार दो, युद्ध होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये हम क्या देख रहे हैं? मरे हुए देवता पुनः कैसे जीवित हो रहे हैं? हमें तो ज्ञात था कि पुनः जिलाने की विद्या मात्र आपके पास है।
1: देवगुरु बृहस्पति त्रोणगिरी पर्वत से औषधियां ला लाकर ऐसा कर रहे हैं।
0: फिर इस युद्ध का अंत कैसे संभव होगा दैत्य गुरु, कैसे संभव होगा? सभी असुर और देवता मर मर कर जी उठेंगे, फिर आपके संजीवनी मंत्र का महत्व ही क्या रह गया?
1: क्रोधित क्यों होते हो? यदि बल है तो द्रोणगिरी पर्वत को ही चढ़ से उखाड़ फेंको।
0: बल, बल। देखिए मेरा बल।
3: अरे अरे, ये क्या देवगुरु, जलंधर ने तो द्रोणगिरी पर्वत को ही उखाड़ डाला।
4: हाँ देवराज, और उसे समुद्र में फेंक दिया। अब तो देवताओं को पुनः जीवित कर पाना संभव नहीं है। अब तो पलायन ही उचित होगा।
3: परंतु देवगुरु, हमारे साथ ये क्यों हुआ?
4: स्मरण करो देवराज, तुमने कैलाश यात्रा पर गण रूपी शिव जी का अपमान किया था, ये उसी का फल है।
3: हे महाप्रभु, हे शिव शंकर, क्षमा प्रभु क्षमा। हे विष्णु भगवान, देवताओं का उद्धार कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु।
5: विष्णुदेव, मैं धन्य हुआ, परंतु माते लक्ष्मी, आप इस युद्ध स्थल में?
6: इंद्रदेव, मैं समुद्र मंथन से प्राप्त हुई लक्ष्मी हूं, अतः समुद्र मेरे पिता हैं। जलंधर की भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है, अतः वो मेरा भ्राता हुआ।

0: मेरा भ्राता मेरे ही पति द्वारा कैसे मारा जा सकता है?
1: प्रिय, ये युद्ध अच्छाई और बुराई के मध्य है। इसमें ना कोई भ्राता है, ना पिता, और ना ही कोई अन्य संबंधी है।
0: देव, मैं मात्र इतना जानती हूँ कि मेरे तो आप हैं और एक भ्राता जलंधर है। युद्ध से किसी को भी हानि पहुंचे वो मेरी ही होगी। मैंने जीवन पर्यंत आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आपसे भ्राता के प्राणों की भिक्षा मांग रही हूँ।
1: देवी लक्ष्मी, आपने तो हमारे समक्ष बहुत कठिन स्थिति उपस्थित कर दी है। ठीक है, मैं जलंधर को स्वयं नहीं मारूंगा, परंतु देवता मेरे भक्त हैं, इनके आग्रह पर युद्ध अवश्य करूंगा। गरुड़राज, युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान किया जाए।
2: देव गुरु बृहस्पति, ये क्या, भगवान विष्णु तक जलंधर से परास्त हो गए?
3: अवश्य ही ये कोई शिवलीला है। भगवान विष्णु तो जलंधर की प्रशंसा कर रहे हैं।
1: दैत्य राज जलंधर,
4: आज्ञा देवीश।
1: तुम धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने भयंकर आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। चराचर त्रिलोकी में तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। मांगो, वर मांगो।
4: हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दें। आज से आप मेरी बहन तथा सभी कुटुंबियों सहित मेरे ही लोक में निवास करेंगे।
1: परंतु जलंधर, ये संभव नहीं है। हा? हमारा आसन रिक्त हो जाएगा।
4: देवेश, वहां मैं किसी विष्णु भक्त को आरूढ़ कर दूंगा। आपको मेरा ये आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा।
0: देव, कुछ ही समय की तो बात है, अनुज का आग्रह स्वीकार कर लीजिए ना।
1: ठीक है देवी, ऐसा ही होगा जलंधर।
4: देवेश, मैं धन्य हुआ विष्णुदेव, मैं धन्य हुआ।
5: दैत्यों, युद्ध बंद हुआ, प्रस्थान।
2: देव गुरु, ये तो बहुत अनुचित हुआ।
3: हाँ, लेकिन अचानक देवी लक्ष्मी के हृदय में ये भ्राता प्रेम कैसे उमड़ आया?
2: और भगवान विष्णु ने ये बात स्वीकार कैसे कर ली?
3: देवराज इंद्र, महाप्रभु की शरण में जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।
2: हाँ देव गुरु, आप ठीक कहते हैं।
6: नारायण नारायण नारायण,
2: ये तो एक प्रकार से जलंधर विष्णु हरे और देवी लक्ष्मी को अपना बंदी बना कर लेगा।
6: परंतु देवाधिदेव, एक असुर के लिए ये कैसे संभव हो पाया?
7: मुने नारद, किसी भी धर्म परायण व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। और फिर उसने विष्णु जी को बंदी नहीं बनाया है, उनसे अपना आतिथ्य स्वीकार करवाकर अपने धर्म को अतिरिक्त बल प्रदान किया है।
3: परंतु देवाधिदेव, इस प्रकार तो जलंधर देवताओं की बराबरी के स्थान पर जा बैठा है।
7: बृहस्पति जी, आप तो देवगुरु हैं, अपने शिष्यों को आतिथ्य भाव का महत्व बताते रहते हैं। अतिथि सेवा अर्थात पुण्य का भागी बनना।
3: परंतु देवाधिदेव, यदि जलंधर इसी प्रकार

0: और अपने पुण्य बढ़ाता रहा तो एक दिन वो सर्वेश्वर बन बैठेगा।
1: ऐसा संभव हो सकता है बृहस्पति जी? और यदि यही होता है तो इस विधि के विधान को टालने वाले हम कौन?
0: अरे महाप्रभु तो बिना कुछ उपाय बताए ही अंतर्धान हो गए। मुने नारद,
2: कहिए देव गुरु बृहस्पति।
0: नारद, आपने अनेक विकट समयों पर देवताओं का उद्धार किया है, संभवतः महाप्रभु इसीलिए अंतर्धान हुए हो कि इस बार भी आप ही देव कल्याण का उपाय सोचें।
2: नारायण नारायण, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है देव गुरु बृहस्पति। विष्णु भक्त नारद को अपने स्वामी को दैत्य जलंधर कारागार से मुक्ति तो दिलानी ही होगी। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, दैत्य राज जलंधर की जय हो।
3: अरे ब्रह्मर्षि नारद, आप हमारी जय जयकार कर रहे हैं?
2: असुर श्रेष्ठ जलंधर जो जय जयकार के योग्य हो उसकी जय जयकार तो करनी ही पड़ती है। मेरे प्रभु द्वारा आपका आतिथ्य स्वीकार करते ही आप मेरे भी तो पूज्य हो गए हैं।
3: आइए विराजिए, यहाँ हमारे समीप आसन ग्रहण कीजिए।
2: नारायण नारायण।
3: नारद मुनि, ये चारों ओर आप क्या देख रहे हैं?
2: आपका वैभव देख रहा हूं दैत्यराज। मैं तो समझता था कि कैलाशपति शिव से अधिक वैभवशाली इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं। सहस्रों योजन तक फैले कल्प वृक्ष वन, सहस्रों काम धेनु, स्वयं जटाओं में चंद्रमा धारण किए भोलेनाथ। परंतु
3: क्या मुने,
2: यहां आकर तो मुझे अपना विचार त्यागना पड़ा है।
3: हैं?
2: नारायण नारायण, क्या नहीं है आपके पास?
3: नारद मुने,
2: ऐरावत हाथी, उच्चय शुवा, अश्व, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान, इंद्रलोक, पाताल, पृथ्वी लोक के समस्त रत्न। जलंधर, आप तो सभी के स्वामी हो, स्वामी। परंतु
3: अब परंतु कैसा मुनिवर,
2: आपके पास स्त्री रत्न नहीं है।
3: स्त्री रत्न? महामुने, काल नेमी असुर की अति सुंदर पुत्री वृंदा मेरी पत्नी है।
2: अवश्य है अवश्य है। दैत्यराज, आपके पास सब कुछ ऐसा है जो देवाधि देव से उत्तम है। परंतु क्षमा करें, देवी वृंदा शिव पत्नी सर्वांग सुंदरी पार्वती के समक्ष उनकी भी आभा फीकी पड़ती है।
3: क्या?
2: मेरे विचार से तो पार्वती जैसा स्त्री रत्न योगी शिव के योग्य नहीं है।
3: भाई, उसे तो आपकी शोभा बनना चाहिए। परंतु मुने,
2: किंतु परंतु कैसा असुराज, जब तुम्हारा बल देख स्वयं नारायण तुम्हारे लोक में वास करने लगे हैं तो क्या मांगने पर शिव तुम्हें पार्वती नहीं दे देंगे? विष्णु जी के यहां आने से वैसे ही उनकी शक्ति क्षीण पड़ चुकी है।
3: मुने नारद, क्या ऐसा संभव है? क्या मैं उस अति सुंदर नारी पार्वती को ग्रहण कर सकता हूं?
2: नारायण नारायण। कर सकते हो अथवा नहीं, ये तो समय ही बताएगा। परंतु यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो प्रयास तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पार्वती तुम्हारे अंक शाइनी हो जाए तो
3: होंगी होंगी मुने नारद, अवश्य होंगी।
1: दूत राहु आज्ञा दैत्यराज, जाओ योगी शिव से हमारे हृदय की इच्छा व्यक्त करो और पार्वती को अपने साथ लेकर आओ।
3: उसका सौंदर्य वर्णन सुनकर हम क्षण भर भी उसके बिना नहीं रह सकते।
1: जाओ तुरंत अपने साथ लेकर आओ, जाओ।
3: जो आज्ञा।
2: नारायण नारायण नारायण।
4: और परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार उस महादैत्य की बुद्धि भ्रष्ट कर नारद मुनि प्रसन्नता से लौट गए।
5: अर्थात महाभाग सूत जी, जिस धर्म आचरण के बल पर असुर राज जलंधर इतना पराक्रमी और बलशाली बना था, नारद मुनि ने अपने चतुर वाक वाणों से उसे ही भेद डाला।
4: हाँ शौनक जी, यदि प्रवृत्तियां इतनी सरलता से बदल जाती होती तो क्या सभी मानव और असुर देवता न बन गए होते? कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्राणियों के भीतर दबी प्रवृत्तियां सर उठाती ही हैं और उनके नाश का कारण बनती हैं।
5: तो जलंधर के हृदय में जागी इस आसुरी प्रवृत्ति ने उसका कैसे नाश किया महाभाग?
4: ये जानने के लिए तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी शौनक जी।
6: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण में हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड के 13वें और 14वें अध्याय से प्रसंग लिया था।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

हीचती रामांची स्वामिनी। असुन सुवर्णा श्यामल मलिना, असुन सुवर्णा श्यामल मलिना, अधो मुखी ही शशांक वदना। ग्रहण कालीची का दिग्ललना, हताश बसली दिशा विसरुनी, हीचती रामांची स्वामिनी। संदिग्धार्था जनु स्मृति ही, अन्यायार्जित संपत्ति ही, अमूर्त कोणी चित्रकृति ही, पराजिता वा कीर्ति वीपिनी, हीचति रामांची स्वामिनी। राम वर्णिता आकृति मुद्रा, राम वर्णिता आकृति मुद्रा, बाहुभूषणे प्रवाल मुद्रा, निःसंशय ही तीत सुभद्रा, हीत जानकी जनक नंदिनी, हीचति रामांची स्वामिनी। असेच कुंडल वलये असली, असेच कुंडल वलये असली, ऋष्य मुकावर होती पडली, रघुरायानी ती ओळखिली, अमृत घटिये यशोदायिनी, हीचती रामांची स्वामिनी।

0: बैठो बच्चों, बैठो बैठो, आज सुनाता हूँ मैं, बैठो आज सुनाता हूँ मैं रामचंद्र की गाथा। माता पिता के हुक्म के आगे राम ने टेका माथा। चले गए वन में ना आई मन में कोई शंका, अच्छे अच्छे काम किए सब और जीत ली लंका, और जीत ली लंका।
1: अच्छा बाबा ऐसा हुआ था।
2: हुण तुसीं सुन रहे सी पंजाबी फिल्म संगीत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले शाम दे 4:30 बज रहे ने। हुण असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे हां, जित्थों तुसी शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

हे जगदम्ब, मैं अपनी सेवा करे करी दी। हे देवी, अपने कोई अधिक धन सामग्री की कहीं अर्पियो न थी, तो पण मुझ पर आप अनुपम स्नेह धरावो छो। एनु कारण ए छे के संसार मा कुपुत्र पैदा थई शके छे, पण माता क्यारे कुमाता बनती नथी।

काल रात्रि। देवी भागवतना पांचमा स्कंदमा तेवीसमा अध्यायमा बताव्या प्रमाणे पार्वती देवीना देह शरीरना कोषमाथी निकळेला होवाती ए अंबिका देवीने कौशिकी एवं नाम आपवामां आव्युं छे। कौशिकी के अंबिका पार्वतीजीना शरीरमांथी निकळी जता पछी पार्वती ए भयंकर श्याम कृष्ण काळा वर्णवाळा थया एथी ते कालिका कहवाया। एमना आ महाभयानक स्वरूपना दर्शनथी दैत्योने अपार भय थयो पण देवोने माटे ए अपार हर्षदायी बन्या। એ જ દેવી એ કાલરાત્રી બન્યા છે એમ દેવી ભાગવત કહે છે। ત્યાં કહ્યું

अर्थात एक आलरात्रि श्याम कृष्ण वर्णवाळा कृष जेमा रक्तवाहिनी नसो देखाई रही छे एवा वृद्ध देखाता तो फैलायेल एवा वितत आकृति वाला जंगल जेवु जमनु मस्तक छे के जे अग्नि ज्वालाओ थी लपेटायेलू होय एम लागे छे। अति दीर्घा बहु लांबा अने भयंकर मुख धरावता ए कालरात्रि ए जाने आकाश ने मापवा तैयार न थया होय एवा एमने अमे प्रणाम करीए।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सदगुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति पिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।